जी, मेरे आंखों में भी पानी आ गया क्योंकि ये जो महफिल आज हुई बहुत बहुत ही सक्सेसफुल हुई. और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम लेडीज, मौलूद वाज ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, अल्लाह मुस्कुरान, रिहाना भाभी, रोई का कंप्लीट शिफा. और ये मैसेज आया हमारी प्यारी हलीमा की तरफ से. और मैंने दो नाम लेना भूल गई, हसन और तस्नीम का. जी, ये भी हसन साहब बेटे हैं रिहाना और अब्दुल अजीज रोईकर के, और तस्नीम उनकी बहू. तो माजरत चाहती हूँ. और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है हमारी प्यारी, बहुत सी प्यारी दोस्त तस्लीमा की तरफ से, जो कहती है, माय डियरेस्ट आंटी रिहाना, एज आई रिफ्लेक्ट ऑन अनदर ब्यूटीफुल मौलूद, माय हार्ट इज फिल्ड विद इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग इट हैज बीन टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ लव, रिमेम्बरेंस एंड डिवोशन ओवर द इयर्स. In a life that is often filled with many responsibilities, organization, platforms, and opportunities to meet people from all walks of life, there remains something truly unique and special about the Athlon Ladies Mehfil Maulud. There's a warmth, a sincerity, and a love that cannot be replicated. It is a gathering that my heart always looks forward to, and one that I could never say no to. This is because it is more than an event, but it is a circle of love for our Prophet Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nurtured through your beautiful example, your leadership, and your unwavering dedication. Main fir se kahungi, unwavering dedication, kyunki aaj kal waqt bahut mehenga ho chuka hai. Aur inki puri family ye mehfil sajane mein is tarah lag jati hai ki wo apne time ki bhi parwah nahi karte. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue blessing us with your Mubarak company, your guidance, and your love for Rasul sallallahu alaihi wasallam. May we learn from the life of purpose and devotion that you have shown, and may Allah allow us and beloved family to continue walking this path of love and service. I already look forward to the next Maulud, inshallah, and pray that we are once again gathered together under your blessed leadership, sharing in the noor and barakah of this beautiful celebration. May Allah preserve you, honor you, and surround you with his endless mercy. Ameen. Aur Rehana Babi, meri bhi khas duaen aapke liye, Allah Taala aapko sehat de, tandrusti de, aur aapka saaya hamesha aapke bachchon pe rakhe. Ameen. To agla kya hai, noor wala Mustafa aa gaya.

जी हाँ, ये थे इस्माइल ताज और ये हमने स्पेशली प्ले किया हमारे जमाल साहब और मुमताज के लिए. ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है जमाल साहब और मुमताज अप्पा आप जल्द से जल्द मक्के मदीने पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. अगला कलाम ये है.

जी मुबारक हो सभी को, मोहम्मद आए हैं और ये महीना है रबीउल अव्वल का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दिया मिलाए गए। हम उनकी बहुत सारी सुन्नतें हैं और एक खास सुन्नत है सबसे मिलजुल के रहना और एक दूसरे से प्यार करना। अगला कलाम है माँ के पर, देखो मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है।

0: बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत कलाम. बहुत सारे लोगों ने ये ट्रैक एंजॉय किया, आंटी गौरी और सकीना आपा और बसंती और अजीज आपा, काफ़ी लोगों ने ये ट्रैक पसंद किया. जैसे हम मौलूद तो मनाते हैं लेकिन नबी के सुन्नतों का हम खात्मा कर देते हैं, ताल्लुकात तोड़ देते हैं हमारे खुद रिश्तेदारों से, दोस्तों से. और ये ज़िंदगी है, ये हक की हकीकत है. मैसेज आया है हमारी अजीज़ा आपा की तरफ से, जो कहती है शी वॉन्ट्स टू सेंड अ बिलेटेड बर्थडे मैसेज टू डॉक्टर रफ़ीक अब्बास. मे यू स्टे द वंडरफुल बीइंग यू आर. वी इन क्रेवन बी वुड लाइक्स टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर विशेस. इट कम्स फ्रॉम अजीज़ा हला फुपा एंड चिल्ड्रन. एंड डॉक्टर अब्बास की जो इस्लामिक सालगिरह है वो है 12 रबीउल अव्वल, और मेरे भाई की भी मोहम्मद अली की, इनकी सालगिरह 12 रबीउल अव्वल को हुई है. तो अल्लाह ताला इनको हर तरह से नवाजे, खुशियों से, रोज़ी रिज़्क से, इनका साया हमेशा उनके बच्चों पे रखे और हमेशा आबाद रखे. तो अगला कलाम है थकी हुई रूह.
1: जब दुनिया की राहों में कदम थक जाते हैं और रूह आराम मांगती है, तब तेरा जिक्र ही इस थकी हुई रूह को

बेशक थकी हुई रूह जिस तरह के हालात आजकल इस दुनिया में हैं, नफसा नफसी के दौर में जिस हम गुजर रहे हैं, इंसानियत और मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है और दुश्मनी नफरत हसद जलन ये हमारे दिलों में आजकल, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और ईमान पे खात्मा करें। मैसेज आया है मेरी प्यारी दोस्त शायद की तरफ से जो कहती है माशाल्लाह माय डियरेस्ट प्रेजेंटर यू हैव अमेजिंग स्ट्रेंथ माशाल्लाह फ्रॉम बीइंग सच अ ग्रेसफुल एमसी एट द एक्लोन लेडीज महफिल टू प्लेइंग दीज ब्यूटीफुल ट्रैक्स सो परफेक्टली यू डिड एवरीथिंग विद सो मच लव एंड क्लास मे अल्लाह सुबहाना ताला ब्लेस यू एंड इंक्रीज यू इन स्ट्रेंथ नूर एंड गुडनेस आमीन एंड एक्लोन महफिल आई मीन ओरिएंटल लेडीज कल्चरल क्लब की तरफ से ओरिएंटल लेडीज कल्चरल क्लब की तरफ से मौलूद नबी की दावत आई है हमारे शायद दाबा की तरफ से जो कहती है ओरिएंटल लेडीज क्लब कॉर्डियली इनवाइट आवर लवली लेडीज टू जॉइन अस फॉर द मौलूद नबी प्रोग्राम अ मॉर्निंग ऑफ जिक्र अदकार कसीदा नात एंड तकरीर डेट इज 3 सितंबर 2026 21 रबीउल अव्वल 1448 वेन्यू मस्जिदुल कुद्स केत्सल में सुबह 9:30 बजे और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप शायद पाकर 0844917866 या तो फिर फरीदा अहमद 0844525974 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यह दावत ओरिएंटल लेडीज कल्चरल क्लब आपके लिए मौलूद नबी का प्रोग्राम है मॉर्निंग ऑफ जिक्र अस्कार कसीदा नात और तकरीर और ये हो रहा है 3 सितंबर 2026 21 रबीउल अव्वल 1448 मस्जिदुल कुद्स गेट्सविल में सुबह 9:30 बजे अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शायदा पाकर 0844917866 और फरीदा अहमद 0844525974 पे और फिर नियाज विल बी सर्व्ड आफ्टर जहर सला। जजाकल्लाह खैर शायदा पा और अगला कलाम है हम बढ़ रहे हैं रबीउल आखिर ये महीने की तरफ तो अगला कलाम अल्ताफ राजा की आवाज़ में या गौस मेरी कश्ती

थे अल्ताफ राजा साहब, को मेरी कश्ती तूफान से बचा लेना। अगला कलाम ताहिर चिश्ती साहब की आवाज में, यहाँ भी रसूल वहाँ भी रसूल।

बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम ताहिर चिश्ती साहब की आवाज में, और हमें शब्बीर जैकब साहब ने लाल झंडी बता दी। तकरीबन 9:45 हो चुके हैं, 9:45, और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे हार्ड वर्किंग बहुत ही मेहनती शब्बीर जैकब साहब का, जो बहुत खूबसूरती से अपनी टेक्निकल ड्यूटीज निभा रहे हैं, और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई। इसके बाद आप सुनेंगे सदकात साबरी खुदा मिलेगा, फिर चांद अफजल कादरी साहब की आवाज में होगी माँ की दुआ और सलामी होगी या नबी सलाम अलैकुम। अल्लाह के रास्ते बड़े वसी है, न कोई गम हमेशा रहता है और न कोई तकलीफ हमेशा रहती है। आसमान से कभी नाकाम का पैगाम नहीं आता, कभी भी नहीं आसमान से, हमेशा एक यकीन आता है कि अल्लाह हमेशा बड़ा है। गम ना करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दलवी आपसे रुखसत चाहती हूँ। अगर जिंदगी बाकी रही इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। फी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

उदास लगता है। नवाब अंदर की जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, यूनुस भाई सभी से तवज्जो।

चांद फलक पर उदास लगता है, हसीन शाम का मंजर उदास लगता है, सुकून मिलता नहीं रूह को

0: भाई दोस्तों तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप। मिसरे अगर जाया होंगे तो मजा नहीं आएगा।
1: हेलो,
0: कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूं कि ममता की ठंडी हवा चाहता हूं।
1: सुभान अल्लाह।
0: यह उम्र भर की कमाई नसीम, मैं बस